Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: आदरणीय श्रोता, प्रस्तुत सामग्रीहरू सँगै आजको कार्यक्रम जीवनको वचनको अब हामी अन्तमा आइपुगेका छौं। हामीलाई विश्वास छ यो कार्यक्रम सुनेर तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ। तपाईँहरूलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्।
1: रेडियो कार्यक्रम जीवनको वचनका लागि तपाईँको कुनै प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझावहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। जसको लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98510 38516 मा जुनसुकै बेला पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई कार्यक्रम सुनेर बाइबल अध्ययन गर्न मन लागेको छ भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामी तपाईँलाई बाइबल उपलब्ध गराउनेछौं।
0: हवस् श्रोता, आजका लागि म प्रस्तुता कुमराज पनि भोलि फेरि उपस्थित हुने वाचकका साथ बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँलाई प्रभुले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।
2: एलम्बु एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज।
3: अब रंग थेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो। रंग रिगेन योग्यता मुला जयमसी तथा नमस्कार लासो फ्याफुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेदला जीवन क्षण गदे श्रृंखलाला अंक चारी रंगी स्वागत मुला न बियोग तामाङ। रंगला रंगसे रंगला बारे रे हारंग धारणा थान्छु मुला तिगा रंग परमेश्वर से रंगला बारे रे सुंगबा तामली विश्वास लसु मुला वा रंगला जहान रोभान देन स्यान्दो मिगदेसे रंगला बारे रे तिगा बिमुला थेरी ध्यान पिन्छु मुला लानन रंग मिगदेसे रंगला बारे रे तिगा बिमुला विवाह आधारी रंगला बारे रे रंगला विचार शोभ छनोट लमुला चु याकरकी गेन समाचेहीन बा तिग्द विषम मिगदेला विचार परमेश्वरला बारे रे तिगा मनसुबा विषम लालन फरक तमुला वास्तविक रि लालन पटक मिगदेसे याङ लालन रंगबा बेकार देन महत्वहीन मुला विवा मनमुला याङ से थेनी गरेद याङ रंगला बारेरी तिग विश्वास लमुला विवा ताम्री प्रभाव पादिवा बारेरी पिनबरी अतमुला बरु याङ से परमेश्वर से याङला बारे तिगा सुङमुला विवा तिगा सुङमा मुला विषम यानबरी मैदोला परमेश्वर से रंगला अद्भुत सुङस्युला रोसे रंगदा गेन लत्ताबा पोषण घोषणा लसुमुला थेन्दे परमेश्वरलाई इच्छा छु मुला कि रङसे ख्रिस यसुरी तबा रङला पहिचान द सेगो थेन्दे घोसेगो। दोस्रो कोरन्थी 5:21 याङ ख्रिस यम परमेश्वर द सेम निभा मि दोगै बिसी पाप नोन आलाबा ख्रिस द परमेश्वर से याङला जम्मन पाप काप्सी पिन्जी यसु ख्रिस द रङला परमेश्वरलाई रूपी स्वीकार लभगदेला लागिरी बाइबल से बिमुला कि थेनी गदे परमेश्वरलाई नजरी धर्मी मुला थेनी गदेला विकटला पाप गदे यीशु ख्रिस्ट से थेनी गदेला पापला लागिरी क्रुसी क्रुबा कासे क्रुबा मुला एजेपि रंग ख्रिस्टी वास्तवरी हाला मुसुला देन रंग से रंगला बारेर तिगा विश्वास लवरी सेम मुला नही रूपरी फरक ताम ताबरी हमला तिगै क्रिस्चियन गदेसे यीशु ख्रिस्टले रंगला लागरे तिगा हासिल लसुजी बिसी स्वीकार लबा अरे थेनी गदे विगदरी लबा तिगै पाप गदेला आधारी रंगद च्याबरी जारी थानमुला चु मानसिकता से रंगद आत्मिक रूपरी लिच्छा थानला चुसे रंगद परमेश्वर से रंगला लागरी भण्डार लसुब बेनन अद्भुत से गदे पिन्सुबरी ग्याम काला यांगसे परमेश्वर अनुग्रह देन दया नोसेबारी लानन महत्वपूर्ण मुला अनुग्रह थेहिनबा जहाँ परमेश्वर जे रंगदा थेरांगबा से पिन्स्यु मुला जुन रंग याङबारी योग्य आरिमुला दया थेहिनबा जहाँ परमेश्वर जे रंगसे गलत आजेबा लस्युब तमला लागरी रंगदा दोषी ठराव लाबरी आता जब येशु ख्रिस्ट क्रुसी शिशुजी परमेश्वर से रंगला बेनन विगतला पाप गदेला साई फस्युजी रंगदा परमेश्वर से रङदा जसरी च्यासु मुला थेराङला सि नोन च्याबा छनोटला सिगो रङदा थेराङमा मिला रूपी सिगो जोला विगतला पाप गदेसे यसु से रङला लागरी क्रुसी बगावला सिबा कासी पुराण रूबरी खुप्रा मुला जब रङ यसु ख्रिस्टला जिन्ना लसुबा गेला कारण से रङ देन मुला गेन साइदा मोसेबारी दन्सु मुला रङ रङला थोप फिरी थिसी रङ चिब समुदायरी ब्राबरी हम्सु मुला रङ रङहीन विश्वास ल मुला तिग्दा विश्रम रङ था मुला कि परमेश्वर से रङ ख्रिस यसोरी तिगा तबला लाग्री सृष्टि लस्युजी दोस्रो कोरन्थी 5:17 फेद बासेलमा चुदे खालैमी ख्रिस्ट देन छ्याम्गिक तसी जिन्मुला विषम थे छा दोषी जिन्मुला पुरानो ताम गदे जम्मन मासी जिन्मुला च्यागो थि जम्मन ताम छा दोषी पिन्बा मुला चु छ्यान्री चु पल्री रङ नङरी परमेश्वर धार्मिकता मुला चुसे रङदा लानन मुलेवान मि सुमुला रङसे लस्युबा गेला कारणसे आइन्बा तसै यसुजे रङला बारी लस्युबा गेला कारणसे थेरङ तसी जब रङ चन्दो देन अन्तर्क्रिया तम पङ्सु मुला रङला बारेर चु विश्वास लब्रे छनोट लस्युगो जब रङ थेरङ लस्यु मुला रङसे चन्दो प्रति परमेश्वर निस्वार्थ मायाला प्रदर्शन लस्युगो देन परमेश्वर से रङला ज्ञामरी अद्भुत निगदे बाबरी रङसे थेनी गदेला जब देन शक्तिशाली सम्बन्ध ताबरी हमगई याकर्गी सम्बन्ध जुन परमेश्वरलाई मायारी आधारित मुला रङ पुराण ताम्रे सम्मान देन माया याङबरी योग्य मुसुला चन्दोसे रङला बारेर तिग बिमुला विवाह कारण से आइन बा हेन दे रङसे लबा बेनान ताम्रे रङ सिद्ध मुसुला बिसी एन आइन बा याङ हाइम दमन गल्ती देन पाप लाला तिग दवेसम यङ यङला शरीरी कमजोर मुला याङदा परमेश्वर सामु योग्य शुभताम विवाह याङला तर्फ ग्याम यसु ख्रिस्टे जिन्ना लसुबा गे हिन्बा हाइमा दमन चुच दाबी लस्युगो ख्रिस्टी रङला मुस्युला बिसी डन्स्युगो देन जहानला सदस्य गदे छिमेकी गदे वा स्यान्दो हलाइदा रङदा अन्यथा बिबारी थपिन्स्युगो परमेश्वर जे रङदा सृष्टि लामा रोतिगा लावन मुस्युला बिसी स्युमुला हेन्दे रोदेन रङला रुइला लाग्री याकर्गी गेन उद्देश्य देन योजना मुला आमेन रङिला जीवन रे परमेश्वर जे प्रशस्त आशिष पिन्स्यु गई प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रे रङनीला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98685353 हस्त त्यो समय रिङ बिदा ताजी रङनी छङमदानु जयमसी नमस्कार। Time check. It's 7 p.m.